0: ये है सनराइज रेट्रो।
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए करनल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: Sunrise Retro, London Car Retro Asian Mix.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
2: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
4: एंड नाउ द वेदर।
5: आउटसाइड ग्लूमी स्काइज, अ पर्सिस्टेंट ड्रिजल एंड अ चिली विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट and south. But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
6: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
0: Thank you for tuning into Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to tune into our sister station Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Nationwide on DAB, on the free Sunrise Radio app and online at sunriseradio.com.
7: London's Retro Asian Mix. Sunrise Retro.
8: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

0: Sunrise Retro.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
2: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
4: एंड नाउ द वेदर
5: आउटसाइड।

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: Sunrise Retro, London Car Retro Asian Mix. Enjoy the flavor of authentic taste and superior quality. Pooja Sweets. Visit our stores at Tooting, Kingsbury, East Ham, Cardiff, Leicester, Northwood, or brand new stores at Crawley and Hounslow. Or visit us at poojasweets.com. Pooja Sweets and Savories. Har utsav ko nikhare, har bandhan ko savare.
2: Something's calling at Tesco Mobile, a £100 Tesco gift card. Get yours with deals like our Samsung Galaxy S26 FE with 12 gigs of data for just £29.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £324. Pick up your gift card today. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £593.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See tescomobile.com/terms.
3: Navratri ke auspicious festivities mein aapke aangan bar se saakshat Nav Durga Maa ka aashirwad. ऐसी जेम एंड फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं.
4: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
3: जेम एंड फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
5: हनी, आई वाज इन द पेट आइल एंड यू विल नेवर गेस
6: व्हाट इज दैट.
5: अ जर्बल. दे वर ऑन सेल.
6: व्हाई वुड वी वांट दैट?
5: दे वर डूइंग 3 for 2.
7: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
8: Which business insurance provider is trusted by nearly 1 million customers? Take it away, Gina.
9: Simply Business!
8: From builders to bakers to beauticians, if you need business insurance, join nearly 1 million customers who trust
9: Simply Business.
8: So search Simply Business today.
9: Simply Business.
8: That's enough, Gina.
9: Oh, Simply Business.
10: T's and C's and acceptance criteria apply. UK only.
1: London Car Retro Asian Mix. Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर.
11: लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स, सनराइज रेट्रो.

0: Sunrise Retro.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: रिमिटली से अपने प्रियजनों को पैसे भेजें और दूर रहकर भी उनकी दिवाली को खुशियों से रोशन करें। चाहे त्योहार की तैयारी में मदद करना हो जश्न का मजा दोगुना करना हो या थोड़े ज्यादा पैसे भेजने हो उनकी दिवाली का हिस्सा बने चाहे आप जहां कहीं भी हो लाखों लोगों का भरोसेमंद रिमिटली ऐप पैसे भेजने का एक तेज किफायती और सुरक्षित तरीका है ताकि आप उनके साथ खुशियां बांट सकें रिमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले मनी ट्रांसफर पर खास ऑफर पाएं Remitly UK Limited को FCA द्वारा विनियमित और अधिकृत किया जाता है.
4: And now, the weather.
5: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
6: But inside, temperatures of toasty warm, with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
7: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
8: Sorry for the voice note, but can we get a takeaway tonight, Mum?
9: Oh, no, no. We've got leftovers in the fridge. They'll do. It'll be nice.
10: Sorry. I've eaten it. Who's for pizza?
11: Sure, we can give you lots of data, but what really matters is friends and family. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected. Terms apply. See tescomobile.com/ytescomobile.
12: Sunrise Retro.
1: Hit of the hour with Sony Max. Your favourite voices are back for one more shot at the stage. Indian Idol Legends Return with Himesh Reshammiya. Start 17th October only on Sony TV.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: Sunrise Retro.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सनराइज रेट्रो।
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Honey, I was in the pet aisle, and you'll never guess what.
4: What is that?
3: A gerbil. They were on sale.
4: Why would we want that?
3: They were doing 3 for 2.
5: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
6: Sunrise Retro.

आया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर। सनराइज रेट्रो, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स।